0: के आपको रिलैक्स लगता है कि आप
1: टाइम पे खा
0: भी रहे हैं, घर पे टाइम नहीं।